0: कुसदे जाहे भला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ भी भूखण सारंग

तुमरी महिमा वर्ण न साको तो ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई ज्यों पावे त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुद बिन अवर न कोई। सो कहो

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाई दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाई।

दर दरवाजे दाए था क्यों डिठो कड़ियाल ओ निदोषा मारिया हम दोषां दा क्या हाल ओ निदोषा मारिया हम दोषां दा क्या हाल बेशुमार यथा अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले गुरु गरीब नवाज चबर शतर तख्त दे मालक वलिए कुल आलम सांझी बालता दे उपदेशक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तिना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यारियो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालियो जो तन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां चल रही ने उन्हां चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण मालक जी आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैन और आप सरबत संगत असीस बख्शो कोई रसना वांझी ना रहे दोवें हाथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करदे आं लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहत सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

माता दर्त महत दिवस रात द्वैदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम त्याया गए मशकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुरसंगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एके अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, परमेश्वर दत्ता बनना दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करै नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी, सो कहो टल गुरु सेवियै अहनस सह सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

सुख सागर गुर पाया तंसे सा सगल मिटाया। जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दे वसाया।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास स्वी सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दयावै ताए। सब थाई वे सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई वे सहाय। दसां पातशाहियां जी दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ ददार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मोतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अणडिठ कीता तना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के

मत उची मादा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है।

एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन सम

प्रभ की अकथ कहानी, जन बोल है अमृत बाणी। नानक दास वखाणी, गुर पूरे ते जानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निरवैर अकाल मूरत। आजूनी सै भंगुर प्रसाद, एक ओंकार

संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखया लखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रकाश। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मंच तुम्हें उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर धरया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बैंता, कोई ना किसकी तरया। सिर से रिजक स्वाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया। ऊडे ऊडया भैंसें कुंसा, तिस पाछे बचरे छरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावै, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। सब निधान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार। सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा। सब त्या वहीं सब त्या वहीं तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संतो जी, सब दुख विसार नहारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बड़ाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना। तू पर ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावहें हर त्यावहें तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पाए, जिन हर त्याया जी। तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी। तिन का पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी। परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहण तुद जी। हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी। तब ताप ही जप ही बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास जी। कर गिरे आखट कर्म करंता, से भगत परे जन नानक जी। जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे बड अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे पावे
सोई वर्त जी, तू आपे करें सो होई, तुदे आपे सृष्टि सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, धन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मिंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दें सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया हो सब तुझ ही माही, तुझ में दूजा कोई नाही, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संयोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, उद्विन दूजा अवर ना कोई, तू कर कर बिखे जाने सोए, धन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े पहिरे निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, अंक जो मोह पग नहीं चले, हम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूड़ मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जेहों तू नाही विसरया, आसा महला पंजवां, भई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, स्रं जाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जब तप संजम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रख हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करोहा दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो, आभाद मुहि बचावो हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबैर इनको आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है,
आभाद मुझे उबरीय मरण काल का त्रासिन वरीय हो जो सदा हमारे पच्छा श्रीअस्त जो करि हो रक्षा राख लियो मुहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सलोक सवारा नमस्कार हैं तहें हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव देंद जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कटगड़ के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर अस फूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुही सुख पाए साधन के सुही एक एक की पीर पछने घड़ घड़ के पढ़ पढ़ की जन्ने जाव उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या करख कर तुहों कब हूँ तुम मैं मिलत देह थर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरालम जान दु वेद वेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीर अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत पिता जाको पेहे ना पावत वेदा ताको कर पाण अनुमानित महामूड़ कछ पेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत न भिव आव आपनी बुध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खाण बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमड भयो शंकर अगैठा सगरी श्रेष्ठ दखाए अचंपव आजुगा स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो वारे असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणगाता जे अस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहावे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरेओ ताके ताप तनक मै हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह शबै सके ना कोई।
एक बार जिन तुम्हें संवारा काल पांसती ताहें उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद्र दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सरवठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख दे ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो वारी सर्वठो मोहो हो सहाई दुष्ट दोख दे ले हो बचाई सवैया पाई गए जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तर नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक नाम मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुभेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पाण कृपा तुम्हारी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बहीं गए की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार को छाड़ के

राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब तो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारण अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब हवारना सबना गलना समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारी कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एहे वड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित करे सुभागे करे सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तैं सुख होआ तित कर अनाद बाजे आनंद सुनो बड़वागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर रे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर रे

तन मन धीवे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

सहस पद विमलना ने एक पद गंध बहना सहस तब गंध विचलत मोही सब में जो जोत है सोए तिसद चानन सब में चानन होए गुरु साखी की जोत पर।

0: जी की फते।
1: सवैये महले दूजे के एक वंकार सतगुर प्रसाद, सोई पुरख धन करता कारण करतार करन समर्थो, सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो मस्तक हथ सहज अम्यो बूठो छज, सुर नर गण मुन बोहे आगाज, मार्यो कंटक काल गर्ज धावत लियो बर्ज, पंच भूत एक घर राख ले समझ, जग जीतो गुरुद्वार खेले समत सार, रथ उन्मन राख निरंकार कहो कीरत कल सहार, सपत दीप मजार लहना जगत गुर पर सुमरार, जाकी दृष्ट अमृत तार कालक खन उतार, तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार, ओए जो सेवे शब्द सार गाखड़ी बिखमकार, ते नर भव उतार किए निरपार, सत्संगत सहज सार जागीले गुर विचार, निमरी भूत सदीप परम प्यार कहो कीरत कल सहार, सपत दीप मजार लहना जगत गुर परस मुरार, तै तै दिड़्यो नाम अपार बिमल सजास विधान, तै तै दिड़्यो नाम अपार बिमल जास विदार, सादिक सिद्ध सुजन जिया को उदार, तू ता जनक राजा ओतार, शब्द संसार सार रहे जगत रजल पदम विचार, कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार, लहना जगत गुर परस मुरार।
0: तैता हदरथ पायो मान सेविया गुर परवान, साध अजगर जिन किया उन्मान, हर हर दर्श समान आत्मा वंत ज्ञान, जानी अकल गत गुर परवान, जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सुथान, पहर सील सना सकत बिदार कहो कीरत कल सहार, सपत दीप मझार लहना जगत रे गुर परस मुरार, दृष्ट तर्त तम हरन दहन अग पाप प्रणासन, शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन, लोभ मोह वस करन शरण जाचक प्रतपालन, आत्म रत

अरे द्रुम सपूर ज्यो निव खवे कस बिमल बिचार एह तत् जानो सर्बगत अलख बिडाणी सहज।

झेलक पहुजल तरना बेनत करो अरदास। सुनो जे ठाकुर पावे देओ दरस मन चाओ। भगत हो मन ठेरावे बलियो चराग अंधियार में

पीत बसन कुंद दसन प्रयासहत कंठ माल मुकट सीस मोर पंख चहे जियो बेवजीर बड़े तीर तरम अंग अलख अगम खेल किया आपने ओ चहे जियो अकथ कथा।

जग मह परवर्यो निरंकार आकार, ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह भरपूर, शब्द दीपक दीपायो जह सिखे संग रहयो, तत हर चरण मिलायो नानक कुल निम्मल अवतरयो, अंगद लहने संग हो गुर अमर दास तारण तरण जन्म।

0: जन्म जन्म पाशरण तो।
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखै शरण परे ते उबरहे छोड़ जमपुर की लिखै भगत पाए पर

अपार बिमल जास बिथार साधिक सिद्ध सुजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगतर जल पदम विचार कलिपतर रोग बिदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिविद

मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पात साहो सिर सहा देसा जिस पास बैठया सोही है सब नो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब।